0: कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है। आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab.

0: And glorify the praises of your Lord before the rising of the sun and before its setting. Surah Qaf 50, Ayah 39. Reciting Adhkar and remembering Allah is one of the most effective ways to defeat shaitan. It is also an effective way to strengthen your iman. The morning Adhkar will be playing every day. Please tune in to...
1: Coming up next, Rise and Shine Show with Brother Tariq. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Inspire FM के प्रोग्राम कैसे हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि आपके कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंस्पायर एफएम को बनाया जाए और बेहतर। आज ही अपनी राय के लिए हमें फोन कीजिए 01582481810 या फिर हमें टेक्स्ट कीजिए 0777948182 पे।
3: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: अटेंशन फॉर लैंडलॉर्ड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले? तो मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए। मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख का काम भी करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582617617251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
6: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Begin revision, don't delay, every hour counts, starting today. Study smart, stay on track, revise now, ace your exams. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 7 o'clock.

जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8। आई हैव

0: इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयात पर यकीन लाते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। कोई शक ना होना चाहिए।
1: खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर दरअसल मुखातब वो लोग हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत में और आपके ऊपर किताब इलाही के नाजिल होने में शक कर रहे थे। यहाँ से कलाम का रुख उसी मजमून की तरफ फिर रहा है जो आगाज़ सूरा यानी आयात नंबर 2 और 3 में बयान हुआ था। कुफारे मक्का कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा की तरफ से कोई किताब नहीं आई है, उन्होंने इसे खुद घड़ लिया है और दावा ये कर रहे हैं कि खुदा ने इसे नाजिल किया है। इसका एक जवाब इब्तदाई आयात में दिया गया था, अब इसका दूसरा जवाब दिया जा रहा है। इस सिलसिले में पहली बात जो फरमाई गई है वो ये है कि ऐ नबी, ये नादान लोग तुम पर किताब इलाही के नाजिल होने को अपने नज़दीक बईद अज़ इम्कान समझ रहे हैं और चाहते हैं कि हर दूसरा शख्स भी अगर इसका इनकार न करे तो कम अज़ कम इसके मुतालिक शक ही में पड़ जाए। लेकिन एक बंदे पर खुदा की तरफ से किताब नाजिल होना एक निराला वाकया तो नहीं है जो इंसानी तारीख में आज पहली मरतबा ही पेश आया हो। इससे पहले मुतअद्दिद अंबिया पर किताबें नाजिल हो चुकी हैं, जिनमें से मशहूर तरीन किताब वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। लिहाजा इसी नौइयत की एक चीज आज तुम्हें दी गई है, तो आखिर इसमें अनोखी बात क्या है जिस पर खामखा शक किया जाए।
0: हिदायत बनाया था,
1: यानी वो किताब जो बनी इसराइल के लिए रहनुमाई का जरिया बनाई गई थी, और ये किताब उसी तरह तुम लोगों की रहनुमाई के लिए भेजी गई है जैसा कि आयत नंबर 3 में पहले बयान किया जा चुका है। इस इरशाद की पूरी मानवियत इसके तारीखी पस मंजर को निगाह में रखने से ही समझ में आ सकती है। ये बात तारीख से साबित है और कुफार मक्का भी इससे नावाकिफ न थे कि बनी इसराइल कई सदी तक मिस्र में इंतहाई जिल्लत व नकबत की जिंदगी बसर कर रहे थे। इस हालत में अल्लाह ताला ने उनके दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उनके जरिए से उस कौम को गुलामी की हालत से निकाला, फिर उन पर किताब नाजिल की और उसके फैज से वही दबी और पिसी हुई कौम हिदायत पाकर दुनिया में एक नामवर कौम बन गई। उस तारीख की तरफ इशारा करके अहले अरब से फरमाया जा रहा है कि जिस तरह बनी इसराइल की हिदायत के लिए वो किताब भेजी गई थी, इसी तरह तुम्हारी हिदायत के लिए ये किताब भेजी गई है।
0: रहनुमाई करते थे,
1: यानी बनी इसराइल को इस किताब ने जो कुछ बनाया और जिन मदारिज पर उनको पहुंचाया वो महज उनके दरमियान किताब के आ जाने का करिश्मा न था, गोया ये कोई तावीज हो जो बांध कर उस कौम के गले में लटका दिया गया हो और उसके लटकते ही कौम ने बामे उरूज पर चढ़ना शुरू कर दिया हो, बल्कि ये सारी करामत उस यकीन की थी जो वो अल्लाह की आयात पर लाए और उस सब्र और साबित कदमी की थी जो उन्होंने अहकाम इलाही की पैरवी में दिखाई। खुद बनी इसराइल के अंदर भी पेशवाई उन्हीं को नसीब हुई जो उनमें से किताबुल्लाह के सच्चे मोमिन थे और दुनियावी फायदों और लज़तों की तबाह में फिसल जाने वाले न थे। उन्होंने जब हक परस्ती में हर खतरे का डट कर मुकाबला किया, हर नुकसान और हर तकलीफ को बर्दाश्त किया और अपने नफ्स की शहवात से लेकर बाहर के आदाए दीन तक हर एक के खिलाफ मुजाहिदे का हक अदा कर दिया, तभी वो दुनिया के इमाम बने। इससे मकसूद कुफ्फारे अरब को मुतनब्बे करना है कि जिस तरह खुदा की किताब के नुज़ूल ने बनी इसराइल के अंदर किस्मतों के फैसले किए थे, इसी तरह अब इस किताब का नुज़ूल तुम्हारे दरमियान भी किस्मतों का फैसला कर देगा। अब वही लोग इमाम बनेंगे जो इसको मानकर सब्र व सिवात के साथ हक की पैरवी करेंगे। इससे मुंह मोड़ने वालों की तकदीर गर्दिश में आ चुकी है।

0: न मिलेगी।
1: यानी ये कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए तुम बेचैन होते हो? खुदा का अजाब आ गया तो फिर संभलने का मौका तुमको नसीब न होगा। इस मोहलत को गनीमत जानो जो अजाब आने से पहले तुमको मिली हुई है। अजाब सामने देखकर ईमान लाओगे तो कुछ हासिल न होगा।
0: समाओ बसर ने तफहीमुल कुरान की मुकम्मल 6 जिल्दों की ऑडियो सीडी तैयार की है। अल अहजाब, नाम आयत 20 के फिक्रे या सबून अल अहजाबा लम यजहबू से माखूज है। समानाए नुजूल, इस सूरह के मजामीन 3 अहम वाकयात से बहस करते हैं। एक गजवाए अहजाब जो शवाल 5 हिजरी में पेश आया, दूसरे गजवाए बनी कुरैजा जो जिलकाद 5 हिजरी में पेश आया, तीसरे हजरत जैनब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो इसी साल जिलकाद में हुआ। इन तारीखी वाकयात से सूरह का जमाना नुजूल ठीक मुतय्यन हो जाता है। तारीखी पस मंजर, जंगे उहद शव्वाल 3 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए तीर अंदाजों की गलती से लश्कर इस्लाम को जो शिकस्त नसीब हो गई थी, उसकी वजह से मुशरिकीन अरब, यहूद और मुनाफिकीन की हिम्मतें बहुत बढ़ गई थीं और उन्हें उम्मीद बन चली थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों का कला कुमा करने में कामयाब हो जाएंगे। इन बढ़ते हुए हौसलों का अंदाजा उन वाकयात से हो सकता है जो उहद के बाद पहले ही साल में पेश आए। जंगे उहद पर 2 महीनों से ज्यादा न गुजरे थे कि नजद के कबीला बनी असद ने मदीना तैयबा पर छापा मारने की तैयारियां की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रोकथाम के लिए सरिया अबू सलमा भेजना पड़ा। इस तलाह में सरिया उस फौजी मुहिम को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक न होते थे, और गजवा उस जंग या मुहिम को कहा जाता है जिसमें हुजूर खुद क़यादत फरमाते थे। फिर सफर 4 हिजरी में कबाइल अजल और कारा ने हुजूर से चंद आदमी मांगे ताकि वो उनके इलाके में जाकर लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दे। हुजूर ने 6 असहाब को उनके साथ कर दिया, मगर रजी, जद्दा और राबिक के दरमियान पहुंचकर वो लोग कबीलाए हुजियल के कुफार को इन बेबस मुबल्लिगीन पर चढ़ा लाए और उनमें से 4 को कत्ल कर दिया और 2 साहिबों हजरत खुबैब बिन अदी और हजरत जैद बिन अद्दसिन्ना को ले जाकर मक्का मुअज्जमा में दुश्मनों के हाथ फरोख्त कर दिया। फिर इसी माहे सफर में बनी आमिर के एक सरदार की दरखास्त पर हुजूर ने एक और तबलीगी वफ़ जो 40 या बकौले बास 70 अंसारी नौजवानों पर मुश्तमिल था नजद की तरफ रवाना किया, मगर उनके साथ भी गद्दारी की गई और बनी सुलेम के कबाइल उसैया और रिगल और जकवान ने बेरे मऊना के मकाम पर अचानक नरगा करके उन सबको कत्ल कर दिया। इसी दौरान में मदीने का यहूदी कबीला बनी नजीर दलेर होकर मुसलसल बदअहदियां करता रहा, यहां तक कि रबीउल अव्वल 4 हिजरी में उसने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देने की साजिश तक कर डाली। फिर जमादियुल अव्वल 4 हिजरी में बनी गतफान के 2 कबीलों बनु सालबा और बनु मुहारिब ने मदीने पर हमले की तैयारियां की और हुजूर को खुद उनकी रोकथाम के लिए जाना पड़ा। इस तरह जंगे उहद की शिकस्त से जो हवा उखड़ी थी वो मुसलसल 7-8 महीने तक अपना रंग दिखाती रही, लेकिन वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म व तदब्बुर और सहाबाए किराम का जज्बाए फिदाकारी था जिसने थोड़ी मुद्दत के अंदर ही हालात का रुख बदल कर रख दिया। अरबों के मुआशी मुकाते ने अहले मदीना के लिए जीना दुश्वार कर रखा था। गिर्दोपेश के तमाम मुशरिक कबाइल चीरा दस्त हो रहे थे। खुद मदीने के अंदर यहूद और मुनाफिकीन मारे आस्तीन बने हुए थे, मगर इन मुट्ठी भर मोमिनीन सादिकीन ने रसूल खुदा की क़यादत में पे दर पे ऐसे इकदामात किए जिनसे अरब में इस्लाम का रोब सिर्फ बहाल ही नहीं हो गया बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ गया। जंगे अहजाब से पहले के गजबात, इनमें से अव्वलीन इकदाम वो था जो जंगे उहद के फौरन ही बाद किया गया। जंग के ठीक दूसरे रोज जबकि बकसरत मुसलमान जख्मी थे और बहुत से घरों में अजीज तरीन अकारिब की शहादत पर कोहराम बरपा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी और हजरत हमजा की शहादत पर दिलफिगार थे, हुजूर ने इस्लाम के फिदाइयों को पुकारा कि लश्कर कुफार के ताकुब में चलना है ताकि वो कहीं रास्ते से पलटकर फिर मदीने पर हमलावर न हो जाएं। हुजूर का ये अंदाजा बिल्कुल सही था کہ کفار قریش ہاتھ آئی

अज्जुमतुल मुबारक 26 जुल्हिजा 1447 हिजरी और जून की 12 तारीख 2026 ईस्वी है। प्यारे सामीन कराम, आप सुन रहे हैं बज़्म नात। आज लुटन की फ़जाओं में बादलों के साए हैं, कभी सूरज जांग लेता है, कभी बादल अपनी चादर बिछा लेते हैं। मौसम की यह दिलकशी लुटन के इस खूबसूरत शहर की पहचान बन चुकी है। सड़कों पर ज़िंदगी रवां दवां है, घरों में आलेहाना जमा है और इस वक्त बहुत से सामीन अपनी गाड़ियों, दुकानों, घरों और काम की जगहों पर बज़्म-ए-नात के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत नाजल फरमाए। सामीन करम, हर नेमत, हर सांस, हर खुशी और हर सुकून अल्लाह ताला की अता है, इसीलिए हमारी महफ़िल का आगाज़ भी उस रब्बे करीम की हम्द से होता है जिसने हमें पैदा फरमाया, ईमान अता फरमाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया। इरशाद बारी ताला है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। और जब अल्लाह का ज़िक्र होता है तो दिल झुक जाते हैं, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है तो दिल महक उठते हैं। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़रिए हमें हदायत, जिनके ज़रिए तारीकियों में रोशनी, जिनके ज़रिए अल्लाह ने इंसानियत पर अपनी रहमत मुकम्मल फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। आज की इस महफ़िल में हम अल्लाह की हमद भी पेश करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत भी पेश करेंगे, दुरूद व सलाम भी पढ़ेंगे और आपके पैगामात और दुआओं को भी शामिल करेंगे। आप भी हमें अपने पैगामात भेजते रहिए। बताइए आप लुटन के किस इलाके से सुन रहे हैं, अपने मरहूमीन, बीमारों, हज उमरा के मुंतज़िर अफराद और अपने अहले खाना के लिए दुआ की दरख्वास्त भेजिए।

घरों में सुनने वालों, बच्चों को भी हमारा सलाम पहुंचाइए। उन्हें दुरूद पाक की आदत डालें, कुरान करीम से मोहब्बत सिखाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशनास कराएं। यही हमारी आने वाली नस्लों का सरमाया है। या अल्लाह, लुटन बरतानिया और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईमान, सेहत, रिज़्क़ हलाल, अमन और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। हमारे घरों को कुरान और दुरूद की बरकतों से आबाद फरमा।

पशेमानम या रसूल अल्लाह, लुटन की फ़ज़ाओं में आज बादलों और धूप की आँख मचोली जारी है। बहुत से सामीन शायद इस वक्त मस्जिद की तरफ जा रहे होंगे, कुछ अपनी दुकानों और कारोबार को समेट रहे होंगे और कुछ घरों में जुमा की तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके दिन को बबरकत बनाए, आपके सफ़र आसान फरमाए और इस जुमातुल मुबारक को आपके लिए मगफरत, रहमत और कबूलियत का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामीन कराम, आज हम ज़ुलहिज्जा के मुबारक अयाम रुखसत हो रहे हैं और अगर अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी ने वफा की, तो अगले जुमातुल मुबारक नए इस्लामी साल 1448 हिजरी के आगाज़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। नया हिजरी साल हमें हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम पैगाम की याद दिलाता है। ईमान, कुर्बानी, सब्र, इस्तकामत और अल्लाह पर कामल भरोसे का पैगाम देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले इस्लामी साल को हम सब के लिए खैर, बरकत, सलामती, ईमान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल बनाए। जाते जाते दुरूद पाक का नजराना पेश करते चलें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। इंस्पायर FM और इससे वाबस्ता तमाम अफराद को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए इस्लामी साल की पहली बज़्म नात में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ बाँटने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

0: Coming up next, we have recitation of Surah Kaf.
1: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: आप लुटन से समात फरमा रहे हैं। Inspire FM 105.1.

इंस्पायर एफएम की वेबसाइट पर मिलेगी आपको बेशुमार मालूमात, लुटन में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम, लुटन कम्युनिटी की खबरें और बहुत कुछ। विजिट कीजिए www.inspirefm.org।

सफर पे निकला। क्या कुछ लोगों ने हमारी तारीख में यही सवाल पूछे हैं कि नहीं, और इन सवालों के जवाब की तहकीक की है कि नहीं। और मुझे दिल को बड़ी खुशी हुई कि इस पर बहुत काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, लेकिन उसकी अक्सरियत अरबी में है, उस काम की अक्सरियत, और उसका एक्सपोजर अरबों को खुद भी कम है। यानी आम अरब आज का उसको इन बातों का इल्म नहीं है। और उसके अलावा जो बाकी मुसलमान हैं, जो अक्सरियत है उम्मत की, गैरुल अरब, उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो किताबें हैं जिनमें इन बातों के बारे में कुछ बात सिखाई गई है, वो ऐसी इल्मी किताबें हैं, ऐसी टेक्निकल किताबें हैं कि अगर मैं आपको उन किताबों का हवाला देना शुरू कर दूं तो आपको पहले ही बात समझ नहीं आएगी कि वो बात ही इतनी पेचीदा तरीके से बात बयान की जा रही है। तो इस कोर्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया था 2005 में, 2005 में, डिवाइन स्पीच के नाम से। उसका मकसद ये था कि तमाम तहकीक एक वीकेंड में किसी ऐसे मुसलमान के सामने मैं पेश करूं जो, जिसका अरबी में कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको बिल्कुल अरबी नहीं आती, उसको बिल्कुल तफसीर का कोई इल्म नहीं है, लेकिन उसने कुरान का तर्जुमा खोला और पढ़ना शुरू किया, उसको कन्फ्यूजन हुई कि ये क्या हो रहा है, इस किताब के अंदर क्या हो रहा है। और मैं उसके सामने ये बात वाजे करना चाह रहा हूँ कि मैं इस तहकीक के बाद इस नतीजे पर कैसे पहुंचा कि ये एक इंसान के लिए मुमकिन है ही नहीं, ये कलाम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अब जो शुरू से बचपन वाला दावा मैं सुनता आ रहा हूं ना कि ये कुरान इंसान के लिए इस किस्म का कलाम कहना मुमकिन नहीं है, उसकी बुनियाद थी कि मुझसे बड़ों ने कहा है, मेरे वालदैन ने कहा है, इमाम मस्जिद ने कहा है, मैंने बार बार ये बात खुतबों में सुनी है, मैंने मान ली। मेरे पास उसकी अपनी कोई ज़ाती दलील नहीं थी, किसी की सुनी हुई बात मैंने मान ली। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसी बुनियाद पर इसका एतमाद करूं कि हाँ, इसकी मुकाबले में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और इसका मुझे कोई फर्स्ट हैंड यानी बराह रास्त कोई तजुर्बा नहीं है, कोई इल्म नहीं है, तो फिर मैं किसी और पे एतमाद करके अपने ईमान का सहारा लिए हुए हूँ। कुरान बार बार कह रहा है अफला तअक्किलून, सोचते क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं, और हम कह रहे हैं किसी और ने सोच लिया वो हमारे लिए काफ़ी है। तो इस सेमिनार का मकसद ये है कि वो जो कोर्स मैंने कई साल पहले तैयार किया था, फिर उसके बाद वो एक किताब भी बनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में, येल में भी पढ़ाई जा रही है कुरानिक स्टडीज़ के अंदर, मलेशिया में भी पढ़ाई जा रही है। इन 10 दिनों में मैं उस किताब का ख़ुलासा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, और इस एक सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं। मैं अपने लिए, मैं आपके लिए भी नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए इस एक सवाल के जवाब में ये बात पेश कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक कुरान इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं? उसकी कई कई वजूहात हैं, उनमें से कुछ वजूहात का हम अभी जायज़ा लेंगे। तो जो कुरान, जिसको इस कोर्स का नाम मैंने रखा है आखिरी मौजज़ा, आपको पता होगा ना, तो ये जो नाम मैंने रखा है ना, इसके बारे में एक दो बातें पहले समझ लें, फिर हम अपना काम आज का शुरू करते हैं। वैसे हम आज बिहाइंड हैं, मेरा मकसद था आज फातिहा के बारे में मुकम्मल बात हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि होगी, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं रश नहीं करूँगा, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं मटेरियल को रश नहीं करना चाह रहा। अब मैं चाहता हूँ कि आम आराम से एक एक चीज़ को आप सही तरह से समझें, उसके बारे में सवाल हो तो आपको सवाल पूछने का भी मौका मिले। कुरान के मोजज़े के बारे में एक बात समझ लें। अगर कोई समुंदर में गोता लगाता है, गहराई में उतरता है, वहाँ उसको मोती मिलता है या कोई ख़ास किस्म की मछली मिलती है, और वो निकाल के वो लाता है और कहता है ये देखो मैंने क्या ढूंढा समुंदर में से, और वो ये दावा करे कि असल जो समुंदर का खजाना है ना वो मेरे हाथ में है, क्या उसका दावा सही होगा? समुंदर बहुत बड़ी चीज है, आप बहुत छोटी चीज हो, आप जितने भी गोते लगा लो, पूरी जिंदगी गोते लगाते रहो, आपके पास इतने से मोती आने हैं आपके हाथ में, और बाकी कितने लामालूम खजाने पीछे रह गए, ना मालूम खजाने, आपको पता भी नहीं, दुनिया को भी नहीं पता।